0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: यू आर लिस्निंग टू ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो
8: 1413 AM एंड ऑनलाइन।
9: यू आर लिस्निंग टू
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: उन पर तो अताएं होंगी ही, अच्छों का तो हाल अच्छा होगा। सरकार करम हम पर न किया तो हम जैसों का क्या हो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
1: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो। You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुज़ाफ़ात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए
4: फोटोज और वीडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: design.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
8: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
9: बालियां अंगूठियां और हार,
8: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
8: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
8: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
8: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स,
11: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
12: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
11: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
12: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: हज और उम्रे के पैकेज के लिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड को हमेशा याद रखिए। आपके बाबरकत सफर के लिए तमाम तर सहूलतों के साथ मुनासिब पैकेजेस मौजूद हैं। अपनी दीगर सफरी सहूलियात के लिए याद रखिए सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता B5 सैंड हेवन अपार्टमेंट्स, नज़्द तीन तलवार, बिलमुकाबिल बॉम्बे लाइट, फैसल बैंक ब्रांच। इंतहाई मुनासिब कीमत पर आरामदेह सफर के लिए राब्ता कीजिए। फोन 565-4415-16 और 17। मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए वीजे और क़याम ताम की सहूलत भी मौजूद है। सैलानी ट्रेवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
11: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
11: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा दाल चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
14: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स,
13: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
13: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
11: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 14:13 AM.
2: बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश है खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
15: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
9: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
10: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
9: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
10: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274 477 2577
9: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
9: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिर

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो,
0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: www.ncc.co.uk or call 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल, ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी, अकाउंटेंट। जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट।
4: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274-306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज

0: 30 Wetley Hill, Bradford, BD8, 8NG, phone 01274-477-257, Dubai Jewelers.
1: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
2: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014।
8: सोफी ज्वेलर्स।
11: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश। मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: मैनिंगम सुपर स्टोर।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
11: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
12: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
11: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी

0: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
1: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH 8DR, टेलीफोन 07885 428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444 or donate online at ikca.org.uk.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रैडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
15: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
16: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
15: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
16: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
12: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
12: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
13: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
12: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
12: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
1: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
2: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
1: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
2: 07548419678।
1: एशियन वेडिंग UK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
3: आपकी दिलों में रस खोलने वाली सदाई दिल नवाज,
4: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
4: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.
6: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट्स, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
5: And the winner is...
6: And the winner is...
7: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
8: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
9: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
11: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
12: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
13: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
12: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
13: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
12: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
13: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257
12: दुबई ज्वेलर्स व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
14: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
13: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
12: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए।

0: 8074142600078।
1: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़े से बड़े अकाउंट।

जर्रे ही सही कहो से टकरा तो गए हम, जर्रे ही सही कहो से टकरा तो गए हम। दिल लेके सारे बाम नजर आ तो गए हम, जर्रे ही सही कहो से टकरा तो गए हम। दिल लेके सारे बाम आ तो गए हम, और कहते थे जो अब कोई नहीं जहां से गुजरता, कहते थे जो अब कोई नहीं जहां से गुजरता। लो जहां से गुजर कर उन्हें झुटला तो गए हम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर, 1430 AM के साथ साथ ये नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ ये नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप प्लस पे आप हमें BFT एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारे ऐप्स मौजूद हैं। और हमारी इस समय की ये नशात आप लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM के जरिए भी सुन सकते हैं, और CVFM मिल्सबरा से 104.5 FM पे भी हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और साथियों, अब प्रोग्राम रंगे महफिल के आपके मेज़बान सैयद हसन आज़र हैं, और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलुस भरा आदाब पेश करते हैं, तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप सुनने वाले इस वक्त जहां कहीं भी हमें सुन रहे होंगे, हमारी आवाज़ सुन रहे होंगे, और फजल खुदा आप सभी खैरियत से होंगे, और खुदा न खास्ता आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं है तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती दे, और दुआ करते हैं कि यही दुआ आप हमें भी देंगे, क्योंकि मौसम की तब्दीली ने कुछ थोड़ा बहुत हम पे भी असर किया है।

और सामीन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप कॉल करना चाहें, शिरकत करना चाहें, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड एरिया कोड है 01274, स्टूडियो का नंबर है 306677। कोई गीत सुनना चाहें, कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि वो आज के इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बना सकें।

मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ऐ रहबरा जहां मुद्दत के बाद पहुंचे हैं ऐ रहबरा जहां मुझको यकीन है कि चले थे यहीं से हम

और सामिन, अब एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, शायरी है जी एल रावल की, मौसीकी है सोनिक ओमी की। कश्मीर है एक शेर मगर सोया हुआ है, कश्मीर है एक शेर मगर सोया हुआ है, उठेगा तो करेगा ये जहां को तहबाला।

0: 4:13 a.m. and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
6: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
5: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
6: बालियां अंगूठियां और हार,
5: जो दुल्हन करे सिंगार,
6: आज ही मामू काकी की दुकान,
5: खालिस सोने की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
5: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
6: आपकी शान
5: हमारी आन,
6: क्वालिटी की पहचान।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, PD95BR 01274 491 442।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
7: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
6: सोफी ज्वेलर्स?
7: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
6: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
8: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
9: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

और तारिक भाई इस वक्त आप हमें राधर में सुन रहे हैं, बेहद शुक्रिया आपका। आपने कश्मीर के हवाले से कुछ गीत सुनना चाहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे।

मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, मोहब्बत गोलियों से बो रहे हैं, वतन का चेहरा लहू से धो रहे हैं, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हैं।

और सामिन, अभी आप अमजद भट्ट की आवाज में गीत सुन रहे थे दीवा। उम्मीद करते हैं कि गीत आपको पसंद आया होगा। अपनी देसी जुबान में, पोठवारी जुबान में, मीरपुरी जुबान में खूबसूरत गीत था और अमजद भट्ट का ताल्लुक कोटली से है, बड़ा अच्छा गाते हैं। और साथियों, आप लता की आवाज में एक खूबसूरत गीत आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम।

और सामिन, अब ब्रेक से पहले इस घंटे का आखिरी गीत आप सभी सुनने वालों के लिए हम पेश कर रहे हैं। आवाज है मलका इतरनम नूरजहां की, शायरी है जनाबे हबीब जालिब की।

0: No more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटली हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
4: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड,

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी आइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं मूत रिजी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से।
4: You're listening to Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD7 1HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज करेंगे महफिल में दिल किया था गहराइयों से वेलकम खुश आमदेद जी आए अनु। और अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया तो आपको बताते चलें कि आप इस वक्त सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM। हमारी वेबसाइट है www.bradfordasianradio.co.uk bradfordasianradio.co.uk और वेबसाइट के साथ साथ ये नशात आप डैब प्लेटफॉर्म पे भी सुनते हैं। जी हाँ, आप हमें सुन सकते हैं BFD एशियन रेडियो के नाम से ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में डिजिटल साउंड में। और यही नशात अगर आप चाहें तो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा खूबसूरत सा छोटा सा ऐप ज़्यादा मेमोरी भी नहीं लेता और फिर जब आप सुनना चाहें सुन सकते हैं। और हमारी ये नशात इस वक्त आप सुन रहे हैं लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर और CVFM एल्सबरा से 104.5 FM पे भी ये नशात पेश की जा रही हैं। और सामिन आज का ये खसूसी प्रोग्राम हम नाम करते हैं आज़ाद कश्मीर के बहन भाइयों के, और दुआ है कि अल्लाह पाक अपना फजल करम रखे और ये मामलात ये हालात का कोई हल निकल आए। और समीन अब लाइव कॉल का सिलसिला शुरू करते हैं और आज के अपने पहले मेहमान को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: जनाब शकील साहब आप खैरियत से ठीक है?
1: मुझे अल्लाह की मेहरबानी शुक्र है, आपकी दुआएं, आप सुनाएं कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। थोड़ा सा आज नजला जुकाम की कोई शिकायत आवाज से लग रही है या नहीं? कुछ नजला जुकाम की शिकायत मेरी आवाज से लग रही है या नहीं?
1: जी आपको ये थोड़ी सी बात भी
0: है। कहते ना कि जी जी कहते ना कि बहुत मुश्किल मेरी पहचान होगी बदल डालूं अगर मैं अपना ले जा। अल्लाह ख्याल वालेकुम अस्सलाम।
1: जिनमें खालिद सलीम मीर साहब अगर सुन रहे अली भाई हैं,
0: जी जी
1: चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, महबूब इलाही हैं, उस्मान भाई हैं, तारिक जुल्फी साहब है, अगर सर ये बहन सुन रहे हैं उनको भी याद आप।
0: जी जी वालेकुम अस्सलाम और तस्लीमात उनकी जानिब से भी।
1: तो ये गजल है, ये शारिक बिलावी इनका नाम है।
0: जी जी इनायत कीजिए।
1: मिले जब हम भी तो उसको बहुत खुशी की तरह,
0: बाबा
1: मिले जो गांधी तो उसको बर्थ खुशी की तरह, गुजारो जिंदगी दोस्तों जिंदगी की तरह।
0: बहुत खूब।
1: जहाँ पे हक हो वहाँ हक की बात कह दीजिए,
0: जहाँ पे हक हो वहाँ हक की बात कह दीजिए,
1: खामोश रहना भी जुर्म खुदकुशी की तरह।
0: बहुत खूब बहुत खूब। कहते ना कि मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो फिर हश्र उठा क्यों नहीं देते।
1: जहाने हिरसो हवस का तो है गिला ताहम, जहाने हिरसो हवस का तो है गिला ताहम, मिले हैं मुझको इंसान भी आदमी की तरह।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: शुक्रिया। जो बात शीरें जबाने शीरें बयानी का अक्स रखती है, जो बात शीरें जानने का अक्स रखती है, वो बात दिल में उतरती है
0: रोशनी की तरह। वाह वाह।
1: रस्में जहां दारी ये है यात यूं निभाओ, रस्में जहां दारी ये है यात यूं निभाओ, किसी को चाहो तो चाहो बंदगी की तरह।
0: बहुत खूब।
1: वफा की हुरमत है हद का पास था मुझको, तुम्हारे शहर से गुजरा हूँ अजनबी की तरह।
0: बहुत खूब
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर मत है, मैं अपना आप मुकम्मल वजूद हूँ शारिक,
0: वाह वाह,
1: मैं अपना आप मुकम्मल वजूद हूँ शारिक, मुझे गर्ज ही नहीं कि बनूं किसी और की तरह।
0: बहुत खूब बहुत खूब
1: ये शुक्रिया। तो एक गजल है मेहरबान अमरोही।
0: जी जी नाद कीजिए।
1: कहते हैं मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले,
0: मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले,
1: तुझसे कुछ पूछ रहे हैं ये जमाने वाले।
0: क्या कहने क्या कहने, अच्छा है वाह वाह।
1: मेरे हालात से मुंह मोड़ के जाने वाले,
0: तुझसे कुछ पूछ रहे हैं
1: ये
0: जमाने वाले,
1: देख कर मुझको अब राह बदल लेते हैं।
0: वाह वाह। بہت اچھے بہت اچھے, شروع سے پڑھیے گا, خوبصورت کلام ہے بابا.
1: میری آواز سے
0: آواز ملانے والے,
1: تو بھی آ جائے گا حالات کی زد میں ایک دن,
0: تو بھی آ جائے گا حالات کی زد میں ایک دن,
1: میری بربادی کے افسانے
0: سنانے والے. بہت خوب. میں اگر آج زد پہ ہوں, میں اگر آج زد پہ ہوں تو خوشگمان نہ ہو, چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں.
1: پھر کہتے ہیں جانب شہر وفا سوچ سمجھ کر جانا.
0: واہ واہ.
1: جانب شہر وفا سوچ سمجھ کر جانا, لوٹ کے آتے نہیں ہے وہاں جانے والے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: دل کے اس ٹوٹتے رشتے کا بھرم رہ جائے.
0: واہ واہ.
1: دل کے اس ٹوٹتے رشتے کا بھرم رہ جائے, ایک نظر دیکھ لے اے روٹ کے جانے والے.
0: بہت اچھے بہت اچھے.
1: ہاں کبھی دیکھ میرا حال جدائی, حال جدائی آ کر,
0: آ کبھی دیکھ میرا حال جدائی آ کر,
1: غیر کی بزم میں اے ہنسنے ہسانے والے.
0: ہاں ہاں ہاں. غیر کی بزم میں اے ہنسنے ہسانے والے. واہ واہ.
1: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا,
0: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا,
1: خود سیکھے جاتے ہیں اوروں کو گرانے والے.
0: واہ واہ واہ واہ. پھر سے پڑھیے گا.
1: وقت سے سیکھا ہے میں نے یہ ہنر جینے کا,
0: آہا,
1: خود ہی گر جاتے ہیں
0: اوروں کو گرانے والے.
1: تو آپ یہ کہتے ہیں مہربان دل کا ہے نازک یہ ذرا خیال رہے.
0: واہ واہ.
1: مہربان دل کا ہے نازک یہ ذرا خیال رہے, میرے دل پہ نئے زخم لگانے والے.
0: بہت خوب بہت خوب. اس غزل کا پہلا شعر پھر پڑھیے گا, بہت ہی اچھا شعر تھا. مطلع
1: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے,
0: میرے حالات سے منہ موڑ کے جانے والے,
1: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یہ زمانے والے,
0: تجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں یہ زمانے والے. کیا کہنے, خوبصورت ہے. اس کا اگلا, اس سے سیکنڈ والا شعر بھی اچھا تھا, وہ بھی پڑھیے. آواز آواز ملانے والے.
1: دیکھ کر مجھ کو ابرا بدل لیتے ہیں.
0: آہا کیا کہنے,
1: میری آواز سے
0: آواز ملانے والے. بہت اچھے بہت اچھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو صحت و سلامت رہے. اللہ حافظ. اور سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے جناب شکیل صاحب, ہمیشہ اسپیال کلام لاتے ہیں اور آپ سبھی کے لیے پیش کرتے ہیں. شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان کا.

और सभी अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें तो आप तशरीफ ला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी के लिए हाजिर है 01274306677।

0: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी। बुखारी दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
1: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
1: बालियां अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
1: आज ही मामू काकी की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95BR, 01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
2: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
1: सोफी ज्वेलर्स?
2: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
1: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स, आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
3: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
3: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। अपने शेरों की हुरमत से हूँ मुनफ़इल, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूँ। मैंने अब तक तुम्हारे कसीदे लिखे और आज अपने नगमों से शर्मिंदा हूँ। अपने शेरों की हुरमत से हूँ मुनफ़इल, अपने फन के तकाजों से शर्मिंदा हूँ। पाबा जंजीर यारों से नादम हूँ मैं, अपने दिलगीर प्यारों से शर्मिंदा हूँ। जब कभी मेरी दिल ज़दा खाक पर साया गैर या दस्ते दुश्मन पड़ा, जब भी कातल मुकाबल सफारा हुए, सरहदों पे मेरी जब भी रन पड़ा, मेरा खून ने जिगर था कि हरफे हुनर, नजर मैंने किया मुझसे जो बन पड़ा। आंसुओं से तुम्हें अलविदाएं कहीं, रिज़्म-गाहों ने जब भी पुकारा तुम्हें, तुम जफरमंद तो खैर क्या लौटते, हारने पे भी ना जी से उतारा तुम्हें। तुमने जाके इवज आबरू बेच दी, हमने फिर भी किया है गवारा तुम्हें। सीना चाकाने मशरक भी अपने ही थे, जिनका खून मुंह पे मलने को तुम आए थे, ममताओं की तकदीस को लूटने या बगावत कुचलने को तुम आए थे। उनकी तकदीर तुम क्या बदलते, मगर उनकी नस्लें बदलने को तुम आए थे। उसका अंजाम जो हुआ सो हुआ, शब गई ख्वाब नीम, उसका अंजाम जो हुआ सो हुआ, शब गई ख्वाब तुमसे परेशान हुए। किस जलाल और रौनियत से वारद हुए, किस खजालत से तुम सुए जिंदा गए। तेग दर दस्त कफ दर वहां आए थे, तोक दर गदना पापा जोला गए। फिर भी मैंने तुम्हें बेखता ही कहा, खलकते शहर की दिलदही के लिए, अपनी बे आसरा खाक के वास्ते, अपने बे आस लोगों के जी के लिए। गो मेरे शहर जख्मों के मरहम न थे, फिर भी एक सही चारा गरी के लिए। और याद होंगे तुम्हें वो अय्याम भी, तुम असीरी से जब लौट कर आए थे, हम दरीदा जिगर रास्तों पे खड़े, अपने दिल अपनी आंखों में भर लाए थे। अपनी तहकीर की तलखियां भूलकर, तुम पे तोकीर के फूल बरसाए थे। क्या खबर थी कि तुमसे शिकस्ता आना, अपने जख्मों को बस चाटने आएंगे, जिनके जबड़ों को अपनों का खून लग गया, जुल्म की सब हदें पाटने आ गए। और मर गए बंगाल के बाद बोलान में, शहरियों के गले काटने आ गए। आज सरहद से पंजाब मैरान तक, तुमने मक्तल सजाए हैं क्यों गाजियों। इतनी गारत गरी किसकी इमां पे है, किसके आगे हो तुम सर नगू गाजियों। किस शहनशाह आली का फरमान है, किसकी खातर है ये कश्त खून गाजियों। क्या खबर थी कि है जिंदगां, तुम मलामत बनोगे शब्दार की, कल भी गासिब के तुम तख्त परदार थे, आज भी पासदारी है दरबार की। एक आमर की दस्तार के वास्ते, सबकी शहरग पे है नोक तलवार की। क्या ही खूबसूरत शेर की, एक आमर की दस्तार के वास्ते, सबकी शहरग पे है नोक तलवार की। और तुमने देखे हैं झमूर के काफले, तुमने देखे हैं जमूर के काफले, उनके हाथों में परचम बगावत के हैं, पपड़ियों पे जमी पपड़ियां खून की, कह रही हैं कि ये मंजर कयामत के हैं। कल तुम्हारे लिए प्यार सीनों में था, अब जो शोले उठे हैं वो नफरत के हैं। आज शायर पे भी कर्ज मट्टी का है, अब कलम में लहू है स्याही नहीं। खोल उतरा तुम्हारा तो साबित हुआ, पेशावर कातलो तुम सिपाही नहीं।

और अजीज अमीन अभी आप जनाब हबीब जालिब की शायरी सुन रहे थे, आवाज थी मेहदी हसन की। फिल्म का नाम था ये अमन और सितम जरीफी। वक्त देखिए कि ये कलाम सभी जानते हैं कि किसके लिए लिखा गया था, क्यों लिखा गया था, और आज से 50 साल पहले किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि हालात ये रुख भी पकड़ेंगे और हमारे इस प्यारे मुल्क का निजाम जरान पेशा लोगों के हाथ में जाएगा। जो कि मीडिया पे खुल के ऐसे जरान पेशा लोगों को वहां पे कश्मीर में भेजा गया जो खुल के कहते हैं कि अगर इतने हजार बंदे मार दिए जाएं तो हालात ठीक हो जाते हैं। अल्लाह माफ करे कि इंसान को ऐसा कहते हुए जेब नहीं देता, लेकिन वो शख्स सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है, हर कोई देख रहा है। कहते हैं ना कि जब इंसान खूबसूरत फरमान है कि जिसने एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने एक शख्स की जान ली उसने सारी इंसानियत को कत्ल कर दिया। अब जितने भी वाकयात हुए, जितने हादसात हुए गुज़श्ता आप 5-7 सालों का जायजा लें तो आपको पता चलता है कि कहां कहां किस किसने क्या क्या जुल्म किया है। तो अब वही लोग कश्मीर में खलवाड़ करने के लिए भेजे गए हैं और वहां का अमन व अमान तबाह कर रहे हैं। क्या कश्मीरियों का कोई नाजायज मुतालबा है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ ये कहते हैं कि हमें अपने हकूक दिए जाएं और यहाँ पे हुकूमतें ना गिराई जाएं, जो कि आईन के एन मुताबिक है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आप कह सकते हैं कि आईने पाकिस्तान के खिलाफ हो, और जो एन आईने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहे हैं वो इस मुल्क के मुहिब वतन हैं, और जो उसके एन मुताबिक कुछ मुतालबात रख रहे हैं उन्हें क्या क्या अलकाब दिए जा रहे हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक करम करे और इन जरायम पेशा लोगों को, इनसे अपनी कौम को महफूज फरमाए।

ये वादियों

और जी हां सामिन, आज का ये प्रोग्राम हम अपने उन भाइयों के नाम करते हैं जो पूरे कश्मीर से काफले रवानदवा हैं रावलाकोट की तरफ, और फिर उनका उससे अगला पड़ाव होगा मुजफ्फराबाद। अल्लाह पाक उन सब की हिफाजत फरमाए जो अपने हुकूक के लिए निकले हैं, और ना ही वो कोई तहरीक है और ना ही वो किसी के मुखालिफ है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने हुकूक मांग रहे हैं, और हुकूक मांगना उनके लिए जुर्म बना दिया गया है। अल्लाह पाक जराइम पेशा जथे से उनकी हिफाजत फरमाए जो कि कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, उनसे कुछ भी बईद नहीं है। बहुत सी दुआओं के साथ के अल्लाह पाक हमारे प्यारे पाकिस्तान और हमारे प्यारे कश्मीर की हिफाजत फरमाए और जराइम पेशा लोगों से इसे महफूज फरमाए। बहुत सी दुआएं जो इस वक्त इस गर्म मौसम में खुले आसमान तले अपने हुकूक के लिए धरना देके बैठे हैं, अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। बहुत सी दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम से आप सभी सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। ये अपना हुस्न जनू था कि हम जहाँ पहुँचे, ये अपना हुस्न जनू था कि हम जहाँ पहुँचे, खिजां को मौसम गुल में बदल के आए हैं।

0: And the winner is...
1: And the winner is...
2: And the winner is...
0: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 14:13 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
7: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले
8: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
7: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
8: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
7: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
8: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
9: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
8: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
7: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट किसका?

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: सुहाने पल में मैं मोहम्मद अली आपके साथ. अगर आप किसी मशरूफियत की वजह से ये प्रोग्राम नहीं सुन पाते हैं तो बाद में आप इसे ऑन डिमांड पर भी सुन सकते हैं. अगर आप किसी नगमे की फरमाइश करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं suhanepal@asianradiolive.com पर. माँ की दुआ पर एक वाकया सुनाता हूँ. हजरत मूसा अलैहि सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा. इरशाद हुआ फला कसाब होगा. मूसा अलैहि सलाम हैरान हुए और उस कसाब की तलाश में निकल पड़े. वहां देखा तो एक कसाई अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मशरूफ था. अपना कारोबार खत्म करके उसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया. हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस कसाई के घर के बारे में मजीद जानकारी जानने के लिए बतौर मेहमान घर चलने की इजाज़त चाही. घर पहुंचकर कसाई ने गोश्त को पकाया, फिर रोटी पकाकर उसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक निहायत कमज़ोर बुढ़िया पलंग पर लेटी थी. कसाब ने बामुश्किल उसे सहारा देकर उठाया और एक एक लुकमा उसके मुंह में देता रहा. जब उसने खाना तमाम किया तो बुढ़िया का मुंह साफ किया. बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाई मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लेटाकर बाहर आ गया. हजरत मूसा अलैहि सलाम जो यह सब कुछ देख रहे थे तो मूसा अलैहि सलाम ने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और इसने तेरे कान में क्या कहा जिस पर तू मुस्कुराया. कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है. घर पर आने के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ. ये रोज़ खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहि सलाम के साथ रखे, जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ. भला मैं कहाँ और मूसा कली मुल्ला कहाँ.

0: you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet.
1: Listen. You're listening to Bradford Asian Radio.
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: यू आर लिसनिंग टू ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, 1413 AM एंड ऑनलाइन।
0: लिसन ऑन योर पीसी और लैपटॉप, द बेस्ट एशियन म्यूजिक ऑनलाइन।
2: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
0: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: सच कहा है किसी ने, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है. दुनिया की मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है. माँ को नाराज करना इंसान तेरी भूल है, क्योंकि माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है.

0: Did you know there are so many ways to listen to Asian Radio Live? Use the TuneIn Radio app on your mobile or tablet. Listen on your PC or laptop. Or listen and watch at Ustream TV. Asian Radio Live, the best Asian music online.
1: आप सुन रहे हैं एशियन रेडियो लाइव में सुहाने पल मोहम्मद अली के साथ हर रिश्ते में मिलावट देखी कच्चे रंगों की सजावट देखी

0: 24/7, the best Asian music online. You're listening to Asian Radio Live.
1: आप गिल्ली थां ते सो जांदी पर बच्चे नु सुक्की थां ते पाउंदी है। बच्चे दे साहां दी महक मां नु स्वर्गां दा एहसास कराउंदी है।

0: Bradford, asianradio.co.uk, or call 01274 306677.
1: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
4: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
5: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
4: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
5: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
4: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
5: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
4: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
5: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
4: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01

0: to International Radio Channel Asian Radio Live. Guldasta is presented by Hisam Muqaddam.
1: सुनने वालों की खिदमत में हिसाम मुकद्दम का आदाब। ग्लोबल चैनल एशियन रेडियो लाइव आपसे मुखातिब है और हम गुलदस्ता प्रोग्राम ले आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सबको हमारा प्यार भरा सलाम। मस्ती शबाब की हो या मस्ती शराब की, मस्ती शबाब की हो या मस्ती शराब की, दोनों ही हालतों में

फैज अनवर का कलाम साजिद वाजिद की धुन में रचा, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब फिल्म दबंग से आपकी खदमत में पेश कर रहे थे। आइए अब पेश खदमत रफी और आशा की आवाज में फिल्म में एक से बढ़कर एक। वर्मा मलिक ने इसे लिखा है,

0: राजेश फौरन ही कवाली बंद करवा।
1: ये नहीं हो सकता, यहाँ बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं, खामखा हंगामा हो जाएगा।
0: लेकिन
2: शरम सर, तुम ही मेम साहब के संग ये रेलवे डेरे में।
1: देखो वो आदमी जो कवाली गा रहा है, कवाली खत्म हो तो मेरे कार पास ले आओ।
2: क्यों, तुम मुझे में?
1: हाँ
0: जल्दी लाना।

फिल्म एक से बढ़कर एक से लिया गया ये नगमा मोहम्मद रफी आशा भोसले आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। अब पेश खिदमत है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आंखों से वाबस्ता अफसाने हजारों हैं। लता जी गा रही फिल्म उमराव जहां से लिया गया है नगमा, इसे शहरयार ने लिखा है और संगीत बख्शा है खैया।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
14: Dabbar ki mulaqat ne jadu kar diya, hum husn ke ab shama ke parwane ban gaye. से लिखा है प्रेम धवन ने और गोविंद राम ने इसकी तर्ज बनाई है।

तलत महमूद की आवाज के बाद अब पेश है रफी साहब। फिल्म का नाम है हकीकत कलाम, कैफी आजमी का, संगीत मदन मोहन का, मस्ती में छेड़ के तराना।

सिद्धि हसन साहब की आवाज में, देखा जो मुस्कुरा के जो कलियां बिखर गई, देखा जो मुस्कुरा के जो कलियां बिखर गईं, तेरी अदा बहार का मंजर दिखा गई। जुल्फे खुली तो मस्त घटा घिर के छा गई।

पेश है मुन्नी बेगम की आवाज में एक गीत। मस्त आंखों से मस्ती टपकती रहे, होश उड़ते रहे, दूर चलता रहे।

नाम से मित्र सर्व मित्र पुणे बॉम्बे ऑल अराउंड महाराष्ट्र वी हैव अ ब्यूटीफुल गणेश भजन इसे गा रही अनूप चलोता और अनुराधा पोतो।

0: खास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
1: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
0: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
1: 30 वेटले हिल ब्राडफोर्ड BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
2: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
3: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
1: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
2: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 3499, अदर ब्रांच मोगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो, और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75%?

0: Fat Hamid on Bradford Asian Radio.
1: दर्दे दिल करने लगी यादें तेरी बेदार सुन, गम पे गम देने लगे घर के दरो दीवार सुन, छोड़ अब तकरार तारीफ लबो रुखसार सुन, बैठ मेरे रूबरू मुझसे नए अशआर सुन, आहें भर भर के दिए जाते हैं जख्मों को हवा, रफ्ता रफ्ता कर रहे हैं दिल को हम शाहकार सुन, बढ़ रहा है रफ्ता रफ्ता आदमी सोए अदम, काम आता है हमेशा जज्बाए एसार सुन, ढंग जीने का हमें भी आ गया तन्हाई में, अब नहीं करते जमाने से कोई तकरार सुन, ऐसे कब कमजोर दिल थे के तड़पते रात दिल, तेरी यादों ने रखा है दर्द को बेदार सुन, अब क्या दें तू बता नफसा नफसी का सबूत, आदमी से हो रहा है आदमी बेजार सुन, ऐसा जिंदगी में वक्त आया है कि बस फेर के रुख जा रहे हैं रास्ते में यार सुन। सामिन इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ आपकी खिदमत में आप ही की मेज़बान इफ़त हमीद हाजिर है प्रोग्राम रंग तरंग लेकर। रंग तरंग प्रोग्राम आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम 1413 AM और मीडियम वेव पर सुना जा रहा है। सामिन आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सबका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा होगा और यही दुआ है कि आने वाले दिन भी आप सबके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आए और आप सब जहाँ रहें अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। सामिन आगाज करते हैं आज के रंग तिरंग का इस खूबसूरत नगमे से जिसको मैंने लिया राहत फतेह अली की आवाज़ में और उनका साथ दे रही हैं महविश हयात। तू मेरा दिल तू मेरी जान जाने जान मेहरबान आप सब सुनने वालों के नाम।

राहत फतेह अली और महविश हयात को सुना। उम्मीद है कि आप सब ने इस नगमे को पसंद किया होगा। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, आपका खैर मकदम करती हूँ। समय आज भी मैं सेहत के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। इसके अलावा तंजो मिजा और शेर व शायरी का सिलसिला प्रोग्राम में जारी रहेगा। हम सिलसिले जो वफा के रखते हैं तो हौसले भी इंतहा के रखते हैं। हम कभी बद दुआ नहीं देते, हम सिली के दुआ के रखते हैं। उनके दामन भी जलते देखे हैं, वो जो दामन बचा के रखते हैं। हम नहीं हैं शिकस्त के कायल, हम सफीने जला के रखते हैं। जिसको जाना है वो चला जाए, हम दिए सब बुझा के रखते हैं। हम भी कितने अजीब हैं दोस्त, दर्द को दिल में छुपा के रखते हैं। समाइन अब चलते हैं अगले नगमे की तरफ। इसको फिल्म ताजमहल से लिया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नगमा है, और इस नगमे को हम फरहीन आपके लिए पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए

0: Ifat Hamid
1: on Bradford Asian Radio.
2: जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. खूबसूरत आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की फिल्म ताजमहल में फरहीन की पसंद पर ये नगमा पेश किया गया प्रोग्राम रंग तिरंग में. समय एक साहब दफ्तर में तरक्की पाकर अफसर बन गए तो अगले दिन ही ऑफिस के दरवाजे पर बड़ा सा बोर्ड अवेजा कर दिया जिसे पढ़कर पूरे स्टाफ की जान ही निकल गई. लिखा था, यहां मैं बॉस हूं, सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, हमेशा याद रखना और अपनी औकात में रहना. अगले दिन बॉस बाथरूम गए, वापस अपने कमरे में दाखिल हुए तो मेज पर एक कागज पर पैगाम लिखा मिला कि आपके घर से आपकी बेगम का फोन आया था, पैगाम दिया है कि किचन के दरवाजे से जो बोर्ड उतार के ले गए हो वो शराफत से वापस ले आना. बहुत खूब सामने ऐसा भी होता है. उल्फत की नहीं मंजिल को चला. मोहम्मद अजीम आपकी पसंद पर राहत फतेह अली खान की आवाज में ये नगमा पेश कर रहे हैं.

शामिल इस रूए ज़मीन पर जन जर और ज़मीन के बाद जिस चीज़ पर झगड़ा होता है वो कुर्सी है। कुर्सी चाहे स्टील की हो या लकड़ी की, सदारत वजारत की हो या किसी और आला ओहदे की, हर तरह की कुर्सी निहायत अहमियत की हामिल है और हर कोई इसे हर कीमत पर हासिल करने की जुस्तजू में लगा रहता है। कुर्सी का दूसरा महज़ब नाम सीट है। सीट चाहे किसी ट्रेन, गाड़ी या हवाई जहाज की हो या काउंसलर, नाजिम या नायब नाजिम की हो, हर जगह की सीट को हासिल करने के लिए जगह जगह लोग कतारों में नजर आते हैं। खसूसन इलेक्शन के दौरान इसकी अहमियत दो चंद हो जाती है। कुर्सी या सीट हासिल करने वाला इसे हासिल करने के बाद दूसरे को हकीर और खुद को सुपरमैन समझने लगता है। माना कि कुर्सी हासिल करना बेहद मुश्किल है, लेकिन इससे कहीं बढ़कर दुश्वारी उसकी हिफाजत करना है। जो हिफाजत करना जानते हैं उन्हें तो दौलत शोहरत के अलावा इज्जत को भी दांव पर लगाते हुए देखा गया है। बात यहीं पर ख़त्म जो है वो नहीं होती। वो अपनी और अपने अहले खाना की जानों को भी इसी कुर्सी पर कुर्बान कर देते हैं, लेकिन सद अफसोस कि इस कुर्सी में वफा नहीं। इतना सब कुछ कुर्बान कर देने के बावजूद वो थोड़े ही अरसे के बाद कुर्सी नज़र आती है, लेकिन इंसान फिर भी उस कुर्सी से वफा की उम्मीद लगाए उसे दोबारा हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। तो मतलब ये है कि कुर्सी जो है वो कभी भी आपके नीचे से सरक सकती है, तो इसलिए उस कुर्सी पर अपने प्यारों की जानों को कुर्बान मत कीजिए। सामिन साथ देते रहेगा रंग तरंग प्रोग्राम। इस वक्त आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो से सुन रहे हैं और यही प्रोग्राम एशियन रेडियो लाइव से भी आप सुन सकते हैं। सामिन साथ मेरा निभाते रहेगा, इफ़त हमीद के साथ आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। अब चलते हैं सामिन अगले नगमे की तरफ। कुमार सानू की आवाज़ में इस नगमे को लिया है, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। साजन फिल्म का ये नगमा हम पेश कर रहे हैं इस वक्त उस्मा जमाल आपके लिए।

0: में साजन फिल्म का ये नगमा उस्मान जलाल आपके लिए हमने पेश किया। समय साथ मेरा निभाते रहेगा। रंग रंग प्रोग्राम इफ़त हमीद के साथ आप सुन रहे हैं। एक शख्स जो है वो अपना मोबाइल रख कर तो किसी काम के सिलसिले में दूसरे कमरे में गया, तो बीवी ने शोहर का मोबाइल चेक किया तो उसे तीन नहायत मशकूक नाम नज़र आए। नंबर एक नज़ाकत वाली, नंबर दो नाम था भोली भाली के नाम से, और नंबर तीन सपनों की शहजादी से ये नाम उस पर सेव था। ज़ाहिर है ये देखकर बीवी का पारा गुस्से और दुख से ऊपर चला गया। उसने फौरी तौर पर पहला नंबर मिलाया तो दूसरी जानिब से उसकी अम्मी यानी शोहर की सास ने जवाब दिया। फिर इसने दूसरा नंबर मिलाया जो भोली भाली के नाम से सेव था तो दूसरी जानिब उसकी 8 साल छोटी बहन ने जवाब दिया। जब इसने हैरत से तीसरा नंबर मिलाया, You're listening to Bradford Asian Radio
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, BD94 QU 01274 056 014। सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
10: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
11: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
10: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
15: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

थे मोहम्मद रफी फिल्म लोफर में। समय कुछ और अच्छी बातें आपके लिए। तंगो तारीख रास्तों से गुजरने के बाद ही कुशादा और हमवार रास्तों की कदर होती है। सख्त गर्मी और लू के थपेड़े खाने के बाद सायादार दरख्त की छांव दिल को सुकून देती है। तारीख और गहरी रात काटने के बाद ही सुबह की पहली किरण का उजाला जिंदगी को खुशी और उम्मीद की किरणों से भर देता है। सहरा में प्यासा सफर करने के बाद पानी का एक कतरा जो जुबान को तर कर देता है बहुत मीठा लगता है। एक अरसा दश्ते तन्हाई में गुजारने के बाद दिल के बंद दरवाजे पर किसी का दस्तक देना बागों में फूल खिलाने के मुतरादिफ होता है। और अगर जिंदगी का हम सफर आपसे मुखलिस हो तो वही जीने की असली वजह बन जाता है। बिल्कुल सही कहा, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों कुछ और भी याद आ जाता है। फिल्म प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का नगमा शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में मोहम्मद अनवर आपकी पसंद पर पेश किया जा रहा है।

अभी आपने खूबसूरत नगमा आपने सुना शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। मेरी आंखों में ख्वाब उतरा है, फिर नया महताब उतरा है, मौसमों पर निखार है ताज़ा, तुम पे कैसा शबाब उतरा है, जिंदगी को दुखों ने घेरा है जैसे कोई अजाब उतरा है, चांदनी दूर तक नजर आई जब भी मुख से नकाब उतरा है, चिराग बुझ गए वो जिनकी आंखों के, अब उनके वास्ते ताज़ा निसाब उतरा है। अब चलते हैं सामने नकले नगमे की तरफ, और ये खूबसूरत नगमा जो है इसको मैंने लिया है फिल्म तेजाब से, अलका याग्निक और शबीर कुमार की आवाज़ में ये नगमा है, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, नदीम अलवी आप।

0: in to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: समय अब बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से कि तंदुरुस्त रहने के लिए इंसानी जिस्म को किन चीजों की जरूरत होती है. समय हमें विटामिन्स के अलावा जो है हमें जिन चीजों की जरूरत है उनमें एक है क्लोरीन. क्लोरीन आपके जिस्म की सफाई में बहुत अहम रोल अदा करती है, खासकर पेट और आपकी अंतड़ियों के लिए. और ये आपके जिस्म को कम करती है, आपके जिस्म के जहरीली मादों को भी ख़त्म करती है और आपके हाजमे की कुव्वत बढ़ाता है. इसकी कमी से अक्सर लोगों को जुकाम होता है, पेट फूल जाता है, दांतों से खून आता है, तो जिसका मतलब है कि क्लोरीन की आपके जिस्म में कमी है. जिन चीज़ों में क्लोरीन ज़्यादा होता है वो चीज़ें हैं जैसे मूली है, बंद गोभी है, प्याज, पालक, गाजर, टमाटर, ये आप खा सकते हैं अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं. मैग्नीशियम जो है ये इंसानी जिस्म की नशोनुमा और तरोताजगी में बिल्कुल पेश पेश होता है. ये एक पट्ठों को ताकत आपके देने वाली जो है ना, इसमें बहुत ताकत है. और दिमाग और एसाब की परवरिश ये करता है. फास्फोरस और चूने के साथ मिलकर ये हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है. जिस आदमी में कहते हैं थोड़े से मिजाज में जो तेज़ी है, तुरशी होती है, लगता है कि उसमें मैग्नीशियम की उसको ज़रूरत है, तो मैग्नीशियम के लिए आप अंजीर खा सकते हैं, यानी कि फिग है, पालक है, अंगूर, आलू बुखारा, संतरा यानी कि ऑरेंजेस और रेस्बेरीज के अलावा सेब और टमाटर जो हैं आप वो खा सकते हैं. इसके अलावा सामिन आयरन की बात होती है. फौलाद जो है ये जिस्म की गर्मी आपको देता है और फौलाद जो है ये खून का सबसे बड़ा जो है ये जुज़्व होता है. ये एक मकनातीसी ताकत पैदा करता है, खून को सुर्ख ज़र्रात और दिमाग को चुस्त बनाता है. हाथ पांव का सर्द रहना, चेहरे की जर्दरी और जर्दी, चिड़चिड़ा मिजाज, ये इलामात जाहिर करती हैं कि इंसान के जिस्म में फौलाद की कमी है. तो अगर आप में ये कमी है तो आपको चाहिए कि आप दालें जो हैं, साग है, हरी सब्जियां, पालक, मटर, सोयाबीन, गाजर, बंद गोभी, अंडे की जर्दी, गोश्त है और कलेजी वगैरह ये आप खाएं. बशर्त है कि आपको जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये जो कलेजी खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल भी आपका बढ़ जाता है. तो इसलिए खाने से पहले ज़रा अपना आपको पता करना चाहिए और डॉक्टर से भी आपको मशवरा करना चाहिए कि कोई और बीमारी तो नहीं है आप में. तो अगर ये सिम्टम्स जिस तरह मैंने बताए हैं वो आप ज़रूर अपना ब्लड टेस्ट आप ज़रूर आप करवाएं, तो ताकि आपके जिस्म में ये चीज़ों की कमी हो. सामिन ये चीज़ें जो हैं अगले प्रोग्राम में भी मैं इनको जारी रखूँगी कि हमारे जिस्म को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. तो साथ आप मेरा निभाते रहिएगा. अब चलते हैं अगले नगमे की तरफ और इस नगमे को हमने लिया है मियाँ अनवार आपके लिए. खूबसूरत नगमा है, तेरी आँखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है. मोहम्मद रफी की आवाज़, फिल्म चिराग से

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन
11: 0। स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन

0: फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी
1: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
2: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
0: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR। टेलीफोन 0788542839। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grange Road, Bradford 7414760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और
3: किशोर कुमार को फिल्म

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children, to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
1: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
15: के तौर पर माहिरीन का कहना है कि रोजाना एक कप सब्ज चाय इंसानी जिस्म को तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स फराहम करती है और आपका मेटाबॉलिज्म जो है उसको बढ़ाकर चर्बी जलाने के अमल को तेज करती है। तो ये तो थी कुछ चाय के हवाले से सामिन बातचीत, साथ मेरा निभाते रहेगा। अब चलते हैं अगले नगमे तरफ। इसको लिया फिल्म बुड्ढा मिल गया, किशोर कुमार की आवाज, आरजी बर्मन की मौसीकी में। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।

0: प्यार हुए।
1: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे फिल्म बुड्ढा मिल गया में। कुछ और तंज़ो मिज़ाक की बात करते हैं। खातून खाना ने दूध वाले से शिकायत की कि वो काफी दिनों से बहुत पतला दूध ला रहा है। बातूनी और चर्ब जुबान दूध वाले ने अपने बहुत से पेशावराना मसाइल बयान किए, फिर बोला बेचारी भैंसों को खाने के लिए अच्छी घास तो मिल नहीं रही, फिर वो अच्छा दूध कैसे दे सकती हैं, वो तो अपने दूध के मयार पर खुद बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। आप शायद यकीन ना करें कि वो दूध देते वक्त आठ आठ आंसू रोती हैं। अच्छा, मगर तुम इतनी कोशिश जरूर किया करो कि उनके आंसू दूध की बाल्टी में ना गिरें, खातून खाना ने गुजारिश की। बहुत खूब सामीन। चलते हैं अब अगले नगमे की तरफ। महपारा आपकी पसंद पर यह नगमा फिल्म याराना से मैं पेश कर रही हूँ। किशोर कुमार की आवाज़, 1981 में अमिताभ बच्चन की फिल्म। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा।

0: Matt Hamid
1: and Busted Asian Radio.
2: Yeah. Yeti Muhammad Rafi aur unka saath de rahi thi Lata Mangeshkar. एक हसीन और जमील सेक्रेटरी गुस्से से भरी बॉस के कमरे से बाहर निकली तो उसकी साथी वर्कर ने पूछा, जब तुम साहब के कमरे में गई थी तो बड़े खुशगवार मूड में थी, अब गुस्से के आलम में बाहर आई हो, क्या बात है? सेक्रेटरी ने नाक सुकेरते हुए जवाब दिया, उसने मुझसे पूछा था कि क्या अब तुम्हें फुर्सत है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर फुर्सत ही फुर्सत है. मेरा जवाब सुनकर उसने मुझे 20 सफात टाइप करने को दे दिए हैं. फरेबी कहीं का ये बात थी. इसी तरह सास भी कभी बहू थी. नई नवेली बहू शादी के दूसरे रोज अपनी सास के सामने मकान की दीवार फांद कर बाहर गई. दूसरी तरफ उसका आशना खड़ा था, मगर ये मंजर देखकर सास ने बहू का रास्ता नहीं रोका, क्योंकि सास भी कभी बहू थी. बहुत खूब सामिन चलते हैं. मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के इस नगमे की तरफ, और इस नगमे को हमने खुर्शीद साहब आपकी पसंद पर जो है ये सुनवाऊंगी मैं. प्रोग्राम को सुनने और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया. चुरा के दिल मेरा गोरिया चली.

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटले हिल, ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577।
11: दुबई ज्वेलर्स, व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
11: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
10: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
11: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
12: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
1: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
0: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड एट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
2: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 Oak Lane, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
7: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online.
2: You're listening to
3: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज
7: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज
9: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो मीडियम वेव 1413 AM ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो
10: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चलें।
11: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं
10: अरे पगली अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई जी हाँ दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है
11: झिलमिल करते कांटे बालियां कंगन गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार
10: टॉप क्वालिटी बेहतरीन सर्विस ओपन 7 डेज
11: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड BD8 8NG फोन 01274477257 दुबई ज्वेलर्स
10: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक आटा चावल दालें मसाला जात रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट हलाल गोश्त और चूजे फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले बचिए इधर उधर की ख्वारी से शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक व्हाइट एबी रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8JL बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी
12: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
11: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
10: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD8 8DR टेलीफोन 07885 428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड रोड ब्रैडफोर्ड 3

0: Master Jewelers, 93 Hawthorne Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री में। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम बिल्कुल वैसा डलवाएंगे।
2: भाभी वो भी स्पेशल ऑफर्स का फायदा है, जहां कारपेट्स फ्रॉम 299 पर स्क्वायर, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स,
1: खूबसूरत लैमिनेट लाइनो।

मुझे कमाले सुखन से नवाजने वाले, मुझे कमाले सुखन से नवाजने वाले, समातों को भी अब जोक की आशनाई दे। अस्सलाम वालेकुम सामीन, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। 1430 AM के साथ साथ कई नशात आप ऑनलाइन भी सुनते हैं www.bradfordasianradio.co.uk, bradfordasianradio.co.uk हमारी वेबसाइट, और वेब के साथ साथ यही नशात आप डेप पे भी सुनते हैं। जी हाँ, डेप पे आप हमें BFD एशियन रेडियो के नाम से सर्च कर सकते हैं, और फिर आप ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में हमारी ये नशात डिजिटल साउंड में भी सुन सकते हैं। और अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हों, जो कि आजकल बच्चा बच्चा इस्तेमाल करता है, तो आप हमारा स्मार्ट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे आप आईफोन इस्तेमाल करते हो, चाहे आप एंड्रॉयड, दोनों पे हमारी ऐप्स मौजूद हैं। और सामीन, हमारी इस वक्त की नशात आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के संग संग सुन रहे हैं आपके अपने लिंक FM शेफील्ड से 96.7 FM पर, और CV FM मिल्सबरा से

104.5 FM के जरिए भी ये नशियात इस वक्त पेश की जा रही हैं। आप जहां कहीं भी इस वक्त हमारी ये आवाज़ सुन रहे हों, प्रोग्राम रंगे महफिल ये आपके मेज़बान सैयद हसन हाजिर हैं और अपने सभी सुनने वालों की खिदमत में अपने दिल की अथाह गहराइयों से खलूस पर आदाब पेश करते हैं। तस्लीमात। उम्मीद करते हैं कि आप बफ़ज़्ल खुदा सब खैरियत से होंगे और खुदा नखास्ता आज कुछ तबीयत ठीक ना हो आपकी, तो हमारी बहुत सी दुआएं कि अल्लाह पाक आपको से तो सलामती दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज़ सामीन, खूबसूरत दिन, खूबसूरत मौसम, बताइएगा आपका गुज़श्ता हफ्ता कैसा गुजरा, क्या खोया क्या पाया। बस एक बात याद रखने की है कि कहते हैं ना कि सूरज के सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के उभरने को सवेरा नहीं कहते। जिंदगी अज़्म व हिम्मत का नाम है, अगर आप में अज़्म व हिम्मत है तो दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती, और बसूरते दीगर अगर आप में हिम्मत नहीं है, जोश वलवला नहीं है, कम हिम्मती की तस्वीर है, तो फिर जो मर्जी है हो जाए, आप पे उसका कुछ असर नहीं होने वाला। आपके सामने सही हो रहा हो या गलत, आप एक तरह से जिंदा लाश ज़रूर होते हैं लेकिन इंसान कहलवाने के काबिल नहीं होते। अगर आप किसी की मुश्किल में उसका साथ नहीं दे सकते, किसी की दुख तकलीफ़ में उसका सहारा नहीं बन सकते, आपको आप सच को सच और गलत को झूठ नहीं कह सकते, तो ये ज़िंदगी नहीं है फिर, ये कुछ और इसे जो मर्ज़ी आप कह लें ये ज़िंदगी नहीं हो सकती। ज़िंदगी हमेशा दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने का नाम है।

और सामिन, अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत करना चाहें आप कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं 01274306677, ब्रेडफोर्ड 01274306677 के जरिए आज की इस बज में, आज की इस नशिस्त में आप तशरीफ ला सकते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तो राब हैदर, जो कि स्टूडियो में हमारी भरपूर मुआवनत कर रहे हैं। और आज हमारे एक नए साथी, हमारे दोस्त अजीज शहजाद मलिक भी स्टूडियो में मौजूद हैं, और आज उनका ये ट्रेनिंग का पहला दिन है। इंशाल्लाह आपके साथ यहाँ मौजूद हुआ करेंगे ड्राइव टाइम में। इन्हें भी अपनी टीम में ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और आज के इस प्रोग्राम में तो राब हैदर भी आपका साथ निभाएंगे, साथ साथ हमारी मुआवनत करते रहेंगे। और अब यूं करते हैं कि इससे पहले कि हमारी बातें बहुत तवील हो जाएं, तवादत इख्तियार कर लें, आज के इस प्रोग्राम को एक खूबसूरत गीत से सजाते हैं। और गीत है आप सभी रेगुलर कॉलर्स के नाम।

0: कई बार पानी मांग चुका हूँ, आप पानी क्यों नहीं देते?
1: पानी आएगा तो मिल जाए।
0: मुझे अंधेरे में क्यों रखा हुआ है, रोशनी क्यों नहीं?
1: जब तक लालटेन नहीं आती

जी हाँ सामने आप सुने हैं थे ये खूबसूरत गीत हर खुशी हो वहाँ, और मैं हूँ आपका मेजबान तुराब हैदर सही, और आप सुने हैं ब्रैडफील्ड एशियन रेडियो।

और जी सामिन, अब अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और इसके बाद तो राब हैदर ने आपको बताया था कि आप सुन रहे हैं इस वक्त आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 AM पर। और सामिन, आपकी कोई पसंद हो, कोई फरमाइश हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि उसे भी आज के इस प्रोग्राम का हम हिस्सा बना सकें। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज़ैन मलिक,

0: और समीन इस वक्त स्टूडियो में हमारे एक और मेहमान भी मौजूद हैं, जैन मलिक, जिन्हें खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन मलिक, आप खैरियत से हैं? ठीक है
1: जी। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
0: और सुनाइए, आज जी आपकी आवाज़ गालबन बाहर नहीं गई थी। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं?
0: अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। और ये बताइए कि आज का दिन आप इंजॉय कर रहे हैं या नहीं?
1: जी जी, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो में आने के बाद, जो है वो बहुत अच्छा फील हो रहा है।
0: सही सही सही सही। और जो म्यूज़िक आपका कोई फेवरेट म्यूज़िक है, कोई गाना है तो बताइएगा ताकि हम आज के इस प्रोग्राम में उसे शामिल करें।
1: जी जी, वैसे तो मेरा म्यूज़िक का जो टेस्ट है वो तो मतलब ऑल कल्चर्स में ही मौजूद है, लेकिन इस वक्त जो मेरा म्यूज़िक सुनने को दिल कर रहा है वो है लिखे जो खत तुझे।
0: हाँ हाँ हाँ, ये लफ्ज़ खत होता है या खत होता है?
1: खत
0: खत
1: खत।
0: नहीं, ये लफ्ज़ यार ज्यादती है ना, उर्दू के साथ इतनी ज्यादती नहीं करो। ये लफ्ज़ खत होता है, खे और तो खत, ये खत नहीं होता।
1: लिखे जो खत तुझे,
0: खत तुझे। चलिए जी, यूं करते हैं कि जैन के खत भी आज के इस प्रोग्राम में हम चलाते हैं। लिखे जो खत तुझे। उर्दू का यार ये हाल हो गया, आप पाकिस्तान से अभी आए हो और आप खत को खत कह रहे हो। यार मैं किधर जाऊँ, कसम से कुछ समझ नहीं आती मैं कि इंसान क्या करे कि ख़त को जब अपने भी ख़त कहें तो कुछ अजीब लगता है। बहरहाल चलिए, आपने गीत सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है कन्यादान, आवाज़ है सदाबहार मोहम्मद रफ़ी की, शायरी है नीरज की, मौसीकी है शंकर जयकिशन की, आवाज़ है सदाबहार मोहम्मद रफ़ी की, गीत आप के नाम है।

समीन अबीर रुखसार चौधरी साहब ने हमें फ़ोन किया है, कहने कि ये गीत वो लगाना चाहते हैं। तो फिर ये गीत का नाम है तुम दिन को दिन कह दो, तुम दिन को दिन कह दो।

0: listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेश खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274 491 442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
10: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
9: सोफी ज्वेलर्स?
10: सोफी नहीं, सोफी। नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
9: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैन, BD94QU 01274056014।
8: सोफी ज्वेलर्स।
7: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
12: ओपन 7 days 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, ऑन ब्रेडफोर्ड, 9627222 9627222।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
13: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
14: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
13: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
14: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
15: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
16: जी हाँ समी, मैं अभी के बाद हम आप सभी को एक और दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं। और आइए ये सादा बहार गीत शकील साहब की फरमाइश से आपको सुनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये गीत पसंद आए।

जी हाँ, तुझे क्या सुनाऊँ मैं दिल रुबा, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। कहते ना कि यूं तो वतन भी जान से बढ़कर अजीज है, यूं तो वतन भी जान से बढ़कर अजीज है, अपना मफाद सबको है लेकिन अजीज तर।

वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे। जी हम मौजूदा हालात के तनाजुर में देखिएगा कि वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुजर गए हैं जो मौसम गुजरने वाले थे। और नई ऋतु में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, नई ऋतु में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, वो जख्म ताज़ा हुए हैं जो भरने वाले थे। नई ऋतु में दुखों के भी सिलसिले हैं नए, वो जख्म ताज़ा हुए हैं जो भरने वाले थे। और हासले कलाम खूबसूरत तरीन शेर के, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे। और हजार मुझसे वो पैमाने वसल करता रहा, हजार मुझसे वो पैमाने वसल करता रहा, पर उसके तौर तरीके मुकरने वाले थे। हजार मुझसे वो पैमाने वसल करता रहा, पर उसके तौर तरीके मुकरने वाले थे। और तुम्हें तो फख्र था शिराजा बंदिए जहाँ पर, तुम्हें तो फख्र था शिराजा ये बंदिए जहाँ पर, हमारा क्या है कि हम तो बिखरने वाले थे। तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, तमाम रात नहाया था शहर बारिश में, वो रंग उतर ही गए जो उतरने वाले थे। और इस एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, इस एक छोटे से कस्बे पे रेल ठहरी नहीं, वहां भी चंद मुसाफिर उतरने वाले थे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे भी छड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन संवरने वाले थे।

यह समीन आप सुन रहे थे, ये सादा बहार गीत नूरजहान का नाम था, कल तक जो कहते थे अपना। और समीन अभी आप सुन रहे आपका अपना ब्रेडफ्रूट इंजन रेडियो 1414 AM पर। मैं हूँ आपका मेजबान तुराबिद सैयद। स्टूडियो का या आप दूसरी हिस्से में हमारे साथ मुलाकात करना चाहते हैं, हमारा स्टूडियो फ़ोन नंबर है 01274306677।

0: और सामिन इस वक्त जैन स्टूडियो में मौजूद है। जैन, आपके सामने एक खूबसूरत गज़ल मैं देख सकता हूँ, तो सुनने वालों के नाम कीजिएगा। और इस गज़ल का एक शेर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जब आप सुनाएंगे तो मैं आपकी दाद दूंगा। जी
1: जी जी। थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो,
0: थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो,
1: तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते
0: क्या
1: हो,
0: क्या कहने, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के
1: जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो।
0: जो ही रिटायरमेंट होगी दूसरे दिन दूसरे मुल्क में। क्या शेर है यार, फिर सुनाओ।
1: हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना,
0: जो लोग वहीं गुरबत देख रहे हैं उन्हें कहाँ जाना है।
1: तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो।
0: जब मुल्क में होते हैं तो यूं के जैसे ये ठेकेदार हैं इस मुल्क में, और जो ही रिटायर होते हैं अल्लाह हाफिज।
1: तुमसे बात,
0: हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना,
1: तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो।
0: माशाल्लाह।
1: तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूँ, मुझको बातों में मगन छोड़ के जा सकते हो।
0: क्या कहने अमार के, आहा।
1: ऐसे आ सकते हो जैसे कोई खुशबू आए,
0: ऐसे आते हो जैसे कोई खुशबू आए, आहा।
1: ऐसे आ सकते हो जैसे कोई खुशबू आए, और जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हो।
0: और जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हो, वाह वाह।
1: जाने को घुटन छोड़ के जा सकते हो।
0: और हम परिंदों को कहाँ आता है हिजरत करना,
1: हिजरत करना।
0: हम दरख्तों को कहाँ आता है
1: हिजरत करना,
0: तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। क्या कहने, क्या

0: the best Asian music online.
1: You're listening to Bradford Asian Radio,
2: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
9: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
8: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
9: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
10: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
11: आओ, असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
12: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
11: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
12: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
11: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
12: 30 वेटली हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274477257। दुबई ज्वेलर्स,
11: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
13: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
12: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
11: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885428349। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760।
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078। शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
2: लगता है आपने एशियन वेडिंग्स UK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते
3: हाथी सामान।

और सामिन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को आज के रंगे महफिल में खुश आमदेद कहते हैं। और सामिन, अगर अभी अभी आपने हमारा ये रेडियो स्टेशन सुनना शुरू किया है तो आपको खुश आमदेद कहते हैं। आप इस वक्त सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1430 एम पर। यही नशियात आप लिंक एफएम शेफील्ड से 96.7 एफएम पर और सीवी एफएम मिल्सब्रा से 104.2

0: 5FM पे भी सुन रहे हैं। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं तोराब हैदर सैयद और अजैन शहजाद भी स्टूडियो में मौजूद हैं। अब हमारे साथ लाइन पे हमारे बहुत ही रेगुलर कॉलर जनाब शकील साहब मौजूद हैं, जिन्हें आज के इस प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।
0: जी जी शकील साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं?
1: जी अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है, आपकी दुआएं हैं, आप सुनाएं कैसे
0: हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, सब खैरियत है।
1: तो तमाम सुनने वालों को मजदद से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: खालिद सलीम साहब सुन रहे हो तो अली भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब, नवीद भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब, बाबू बलाई, तारिक सैन है, सारिया बहन, सबको मजदद से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सभी की जानिब से।
1: तो एक गजल है, ये लिखने वाले हैं नातिक कलाउटी।
0: जी जी इनायत कीजिएगा।
1: किसको मेहरबान कहिए कौन मेहरबान अपना,
0: किसको मेहरबान कहिए कौन है मेहरबान अपना, वाह वाह।
1: वक्त की ये बातें हैं, वक्त अब कहाँ अपना।
0: हाँ हाँ हाँ, वक्त की ये बातें हैं, वक्त अब कहाँ अपना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़ी इंजॉय कर रहे हैं जैन भी आपकी शायरी को।
2: जबरदस्त, बेहतरीन।
1: अब जहाँ में बाकी है आसे निशान अपना,
0: वाह।
1: उड़ गए सब बादल, रह गया धुआं अपना।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने।
1: ऐ खुदा गिला सुन ले हमारी बेकरारी का।
0: वाह वाह,
1: आज हाल हाल कहता है एक बेजुबान अपना।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: सो के रात काटी है बेकसी के पहलू में,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: चांदनी ने देखा है मेरे घर समा अपना।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से बढ़िएगा, वाह वाह।
1: सो के रात काटी है बेकसी के पहलू में, चांदनी ने देखा है मेरे घर समा अपना।
0: बहुत खूब, बहुत। कहते हैं ना कि काटी है यूं तो सैकड़ों रातें फिराक की, काटी है यूं तो सैकड़ों रातें फिराक की, लेकिन कुछ आज शाम से नक्शा ही और है।
3: वाह
0: वाह वाह,
1: गुड गुड। तो हम सफर के किस्से को खत्म करके चलते हैं,
0: हम सफर के किस्से को खत्म करके चलते हैं।
1: रास्ता बदलती है अब अपनी दास्ता अपना।
0: हाँ, रास्ता बदलती है अब दास्ता अपना, वाह वाह।
1: ना मुराद दुनिया में रह के खूब भर पाए,
0: ओए होए।
1: चल निकल चले है दिल कुछ नहीं यहाँ अपना,
0: ओए वाह वाह।
1: घर तो अब भी दुनिया के धूप में बनते हैं,
0: वाह वाह।
1: घर तो अब भी दुनिया के धूप में बनते हैं,
3: आहा।
1: क्यों उठा नहीं लेता साया आसमां अपना।
0: ओहो बहुत खूब,
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं, जानते हुए नातिक हम वतन की हालत को,
0: वाह वाह।
1: जानते हुए नातिक हम वतन की हालत को,
2: क्या कहें,
1: ढूंढते फिरे जाकर किस लिए मकान अपना।
0: बहुत खूब, बहुत खूब,
1: शुक्रिया,
2: जबरदस्त, बेहतरीन।
1: एक गजल लाया मैं, अरशद साहब इनका नाम है।
0: अरशद जी जी इनायत कीजिए।
1: वो कहते हैं, नए हर रोज हादसे अच्छे नहीं लगते,
0: वाह वाह।
1: नए हर रोज होते हादसे अच्छे नहीं लगते, बहुत सहमे हुए हालात भी अच्छे नहीं लगते।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: मुहाफिज तेरा दामन बहुत ही है खून आलूदा, मुहाफिज तेरा दामन बहुत ही है खून आलूदा, मगर ये दाग दामन पर तेरे अच्छे नहीं लगते।
0: क्या कहने, क्या कहने, फिर से पढ़िएगा।
1: मुहाफिज तेरा दामन बहुत ही है खून आलूदा,
0: वाह वाह,
1: मगर ये दाग दामन पर तेरे अच्छे नहीं लगते।
2: ओए, क्या कहने, क्या कहने,
1: शुक्रिया। फकत अमनो अमा की बात हो तो अच्छा लगता है,
0: फकत अमनो अमा की बात हो तो अच्छा लगता है,
2: वाह।
1: दिलों में खौफ दहशत वसवसे अच्छे नहीं,
0: क्या कहने, क्या कहने, क्या से बढ़िएगा, वाह वाह,
1: शुक्रिया। कदम पिछला उठाएगा तभी आगे बढ़ेगा तू,
0: आहा।
1: कदम पिछला उठाएगा तभी आगे बढ़ेगा तू, शिकस्ता दिल शिकस्ता हौसले अच्छे नहीं
2: होते। ओए होए, क्या कहने, क्या कहने,
1: शुक्रिया। ज्यादा जानते हैं जो वो चुप ही रहते हैं,
0: वाह वाह।
1: ज्यादा जानते हैं जो वो चुप ही रहते हैं, اگر ہم بھی زیادہ بولتے تو اچھے نہیں.
2: ہوئے ہوئے ہوئے کیا بات ہے, کیا بات,
0: کیا کہنے, کیا کہنے.
1: زیادہ جانتے ہیں جو وہ چپ ہی رہتے ہیں, اگر ہم بھی زیادہ بولتے تو اچھے نہیں لگتے.
0: کیا کہنے,
1: چلو مل کر رہیں جب پھول ایک ڈالی کے ہیں دونوں.
3: کیا,
1: چلو مل کر رہیں جب پھول ایک ڈالی کے ہیں دونوں, گلوں کے درمیان یہ فاصلے اچھے نہیں لگے.
2: کیا بات ہے,
0: بہت اچھے بہت اچھے. مجھے صغیر احمد صغیر کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تان رکھی ہے جو تو نے میرے سر پر تلوار, تان رکھی ہے جو تو نے میرے سر پر تلوار, میں تیرے نام کے گن گاؤں بھلا بنتا ہے.
3: بہت خوب
1: ماشاءاللہ. پھر کہتے ہیں امیری اور غریبی دیکھ کر یہ فیصلے کرنا.
0: امیری اور غریبی دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا,
1: امیرے شہر تیرے یہ فیصلے اچھے نہیں لگتے.
0: بہت اچھے, پھر سے پڑھیے گا. واہ واہ.
1: امیری اور غریبی دیکھ کر یہ فیصلے کرنا, امیرے شہر تیرے یہ فیصلے اچھے نہیں لگتے. تمہیں آواز دیتا ہوں چلے آؤ جہاں ہو تم,
0: تمہیں آواز دیتا ہوں چلے آؤ جہاں ہو تم,
1: تمہارے ہجر میں اب رت جگے اچھے نہیں لگتے.
0: بہت خوب, بہت,
2: کیا بات.
1: نصیحت اور حکایت ہے نئی نسلوں کی خاطر.
0: واہ واہ
2: واہ.
1: نصیحت اور حکایت ہے نئی نسلوں کی خاطر, پرانے دور کے اب فلسفے اچھے نہیں لگتے.
2: کیا بات ہے, کیا بات ہے.
1: شکریہ. تو آپ ہی شیئر کرتے ہیں. کبھی بارش کبھی گرمی کبھی سردی ضروری ہے. کبھی بارش کبھی گرمی کبھی سردی ضروری ہے, کسی کو سب ایک سے موسم اچھے نہیں لگتے.
0: بہت خوب, بہت
2: زبردست جی, زبردست بہترین. سر آپ کے پیش خدمت ایک شعر ہے, جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک, ان کی گفتار سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. آج اسی طرح کچھ پتھر پگھلا دیے ہیں آپ نے. آپ کی محبتوں کا شکریہ.
1: شکریہ,
0: بہت شکریہ. اللہ حافظ, اللہ حافظ.

0: और सामिन, अभी आप ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे और अब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं जनाबे रुखसार चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और इन मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा इनका मकरूज रहूंगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहे, सलामत रहे,
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। मेरी बात
0: बेहतरीन, आपकी आवाज़ आ रही है, और स्टूडियो में कौन कौन सुन रहे हैं? तो राब हैदर सैयद आपको इस वक्त सुन रहे हैं, सैयद हसन सुन रहे हैं, और साथ में जैन आपको भी सुन रहे हैं, जैन शहजाद जी।
2: अस्सलाम वालेकुम,
1: तो बड़ी बड़ी हस्तियां स्टूडियो में आई है, तो माशाल्लाह मेरा ख्याल आप तो ये पूरा स्टूडियो आपका माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू और माइक से वो कहते हैं जगमगा रहा होगा के साथ।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बस जगमगा के तो कुछ चीजें भी टूट गई हैं, इतना जगमगाया है।
1: अच्छा अच्छा, चलो फिर फूलों के साथ वो कहते हैं ना,
0: हाँ वो कहते हैं ना कि इसमें भी शायद मेरी ही किस्मत का हाथ था, फेंका जो उसने फूल तो गमला भी साथ था।
2: सर आपके लिए आपके पेशे खिदमत एक शेर है। आप आए हैं दबे पांव बड़ी महफिल में, जैसे गुलशन में बहारों के कदम आते हैं।
0: बहुत
1: माशाल्लाह, क्या कहने मलक साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और
0: रुखसार भाई देखे ना कि मलक हूँ और वो भी सियालकोट के, तो फिर शायरी तो बनती है ना।
1: मैं कहता जी पूरे सियालकोट के हो तो क्या बात है, बाजी बात कहते ना, सोने पे सुहागा हो गया। क्या ख्याल
0: है शायर इकबाल
2: जी, आपकी मोहब्बत है।
1: अल्लाह ताला मलक साहब को दिन दुगनी रात दुगनी अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके इज्जत में रिज़्क में बख्त में इजाफा अता फरमाए। और हमारे पीर सैयद राब हैदर साहब माशाल्लाह, क्या वो कहते हैं ब्रॉडकास्टर हैं ये हमारे, वो कहते हैं ना मुस्तकबिल के फ्यूचर के ये प्रेजेंटर हैं हमारे के हाल।
0: बिल्कुल जी, अभी भी वो चाहते हैं कि उनका था कि स्टूडियो से सारे भाग जाएं और मैं यहाँ पे बैठ के कब्जा करूँ, बड़ी मुश्किल से। ये भी आजकल के जो जबरदस्ती के मुहाफिज नहीं है उन्हीं में से एक ये।
1: अल्लाह ताला उम्र खैर अता फरमाए जी, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आबाद और शाद रहे, और अल्लाह ताला इनके वालदैन का साया हमेशा इन पर कायम और दायम रहे। तो अभी हमारे मोहतरम उस्ताद मोहतरम मुअज्जम मोहतरम शकील साहब आए थे, अल्लाह ताला उनको से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। तो बहुत ही कहते हैं कि बहुत खूबसूरत अंदाज में हमेशा की तरह वो कमाल कर गए हैं के हाल,
0: हमेशा वो दरिया को गुजे में समो देते हैं ना,
1: बेशक सही फरमा रहे हैं आप। और मोहतरम जगीर साहब हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं, जनाब महबूब लाई साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, राणा नवीद साहब हैं, और भी माशाल्लाह जितनी आपकी इतनी खूबसूरत रेडियो की सुनाते जहां जहां तक जिन जिन कामों तक जा रही हैं, अल्लाह ताला सभी को अपने एक जमान में रखे।
0: आमीन आमीन। तो आज क्या सुनाएंगे आप?
1: तो मैं जनाब ये कलाम लेके आया हूँ नसीर तुराबी साहब का।
0: जी जी बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत।
1: तो मैं ये स्पेशल जनाब सैयद तुराब हैदर को, क्योंकि तुराबी का तुराब तो मैं जो है ना डेडिकेट करना चाहता
0: हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत खूब बहुत खूब,
1: थैंक यू। शायर लिखता है, यू है मजलिस से शायर आशिकां, कोई नजर जहां हो तो लेके आ।
0: खूबसूरत गजल उनका इंतखाब अपना है, क्या कहें।
1: बहुत शुक्रिया। यह चश्मे तर का रिवाज है, दिले खूंच कहाँ हो तो
0: लेके आ।
1: ये फजा है अंबर ऊद की, ये महल है जिर्दे दरूद का। ये नमाज इश्क का वक्त है, कोई खुश अजा हो तो
0: लेके आ। बहुत बहुत।
1: ये जो एक अजा का शियार है, ये अजब दुआ का हिसार है। किसी नारसा को तलाश कर, कोई बे अमा हो तो लेके आ।
2: आए हाय क्या बात।
1: कभी कुंजे हुर के करीब जा, कभी ताबा तेने हबीब में। कभी सुबह बैठे शबीब जा, कोई उर्मगा हो तो लेके
0: आ।
1: मेरे मद्द जजर की खैर हो, के सफर है बदला बाहर का।
2: आए है वाह वाह।
1: कोई मिसले नामे हुसैन भी, कोई बाद बा हो तो लेके आ। आखिरी शेर शाह साहब आपकी नजर करना चाहता
0: हूँ। जी जी,
1: ना अनीत हूँ ना दबीर हूँ, मैं नसीर सिर्फ नसीर हूँ।
0: क्या खूबसूरत मकता है, वाह वाह।
1: मेरे जर्फ हरफ को जांच में, कोई नुकता दां हो तो लेके आ।
0: फिर से पढ़िएगा, खूबसूरत मकता है, क्या कहने, क्या मिसालें दी हैं।
1: शायर लिखता है, ना अनीत हूँ ना दबीर हूँ, मैं नसीर सिर्फ नसीर हूँ।
0: हाँ
1: मेरे जर्फ हरफ को जांच में, कोई नुकता दां हो तो लेके आ।
0: بہت خوب,
2: کیا بات.
0: اور نصیر ترابی کی آپ تو جانتے ہی ہیں کہ پہچان وہ غزل ہے نا, کہ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی,
2: کیا بات,
0: کہ دھوپ چھاؤں کا موسم تھا جدائی نہ تھی,
2: کیا بات.
0: بنگال کے اوپر ان کی وہ مشہور زمانہ غزل جو شاید کسی ڈرامے میں بھی گائی بھی گئی ہے, کیا کہنے. اور اس میں اگر ایک ایک شعر پہ آپ جائیں کہ اس بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا, ایک بے وفائی نہ تھی. حقیقت ہے کہ ہم آج خود بے وفا بنا رہے ہیں, ہم بو رہے ہیں, ہم جیسے نہیں ہوئے کہ تم نے اس مٹی میں انسانوں کے سر بوئے ہیں, اب زمین خون و غلطی ہے تو شکوا کیسا ہے. ہم نفرتیں پال رہے ہیں اس وقت, ماشاء اللہ لوگ نفرتیں ختم کرتے ہیں, ہم پال رہے ہیں قومی سطح پہ, تاکہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم اپنا جس پروجیکٹ پہ ہم آئے ہیں وہ پورا کر کے جائیں.
2: ایسی
0: جی جی جناب,
1: ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ بہت خوبصورت, ماشاء اللہ کیا خوبصورت آپ کا انداز ہے. تو میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی پوری محفل کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. وہ سی دعائیں آپ کے لیے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دعا ہے کہ آپ مجھے اپنی نیک دعا میں یاد رکھیں گے.
0: سدا سلامت رہیں, اللہ پاک آپ کو
1: تھینک یو سر, بہت شکریہ, شب بخیر,
2: بہت شکریہ آپ کی تشریف
0: لانے کا, شکریہ, اللہ حافظ. اور جی سامعین, ابھی ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ تھے ہمارے بہت ہی ریگولر کالر جناب رخسار چودھری صاحب, مینچسٹر سے تشریف لاتے ہیں اور خوبصورت شاعری سناتے ہیں. تو کیونکہ بات ہو رہی تھی وطن کی, تو وہاں آج کل سب مایا ہے, جس نے بھی اسے کچھ پیسے دے دیے اسی کے حکم پہ جو ہو سکے گا وہاں پہ ہوگا, سب مایا ہے.
3: اور سامعین, ہم آپ کو یہ خوبصورت گیت سناتے, سمایا ہے اتاولا کا.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। ऑल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की खुआरी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी। बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 201679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services, with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: और सामीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी सुनने वालों को रंगे महफिल में खुश आमदीद। और आप एक शेर आपको सुनाएंगे तो राब, और फिर इनके बाद सुनाएंगे आपको जैन। जी तो राब, थोड़े से माइक से दूर हो जाते
1: हैं। जिक्र शबे फिराक से।
0: जी सुनाओ।
1: जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, जिक्र शबे फिराक से वहशत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी। अब जी हाँ समीन, अब सुना आपका अपना रेडियो।
0: और जी हाँ समीन, अभी आपको तो राब एक शेर सुना रहे थे, पता नहीं कितने दिन लगा के इन्होंने याद किया और आपको सुनाया है, बहुत शुक्रिया तो राब आपका। और अब जैन, जैन आपको सुनाएंगे एक गजल। जी जैन।
2: जी पेश खिदमत है, मेरा सोचना तेरी जात तक, मेरी गुफ्तगू तेरी बात तक, ना तुम मिलो जो कभी मुझे, मेरा ढूंढना तुझे पार तक, कभी फुर्सतें जो मिलें तो आ मेरी जिंदगी के हिसार तक, मैंने जाना के मैं तो कुछ नहीं तेरे पहले से तेरे बाद तक, मैंने जाना के मैं तो कुछ नहीं तेरे पहले से तेरे बाद तक। शुक्रिया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। और सामिन आप यूँ करते हैं कि अगर आप कॉल करना चाहें तो आपको लाइव भी ले जाएंगे, स्टूडियो का नंबर आपको बताते हैं तो आप जी तो आप स्टूडियो का नंबर बताइए।
1: जी हाँ सामिन, हमारा स्टूडियो का नंबर है 012743066777।

0: फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतने चले के रास्ते हैरान हो गए। फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतने चले के रास्ते हैरान हो गए। और फिर यूं हुआ कि राहतें काफूर हो गईं। फिर यूं हुआ कि राहतें काफूर हो गईं। फिर यूं हुआ कि बस्तियां बेनूर हो गईं। फिर यूं हुआ कि मुझसे जुदा हो गया वो शख्स। फिर यूं हुआ कि मुझसे जुदा हो गया वो शख्स। फिर यूं हुआ कि मेरा कोई आसरा न था। और फिर यूं हुआ कि कोई शनासा नहीं रहा। फिर यूं हुआ कि दर्द में शिद्दत नहीं रही।
1: क्या बात।
0: और फिर यूं हुआ कि हो गया मसरूफ वो बहुत और हमें याद करने की फुर्सत नहीं रही।
1: आए आए।
0: और अब क्या किसी को चाहे कि हमको तो इन दिनों खुद अपने आप से भी मोहब्बत नहीं रही। और फिर यूं हुआ कि दिल में किसी को बसा लिया। और फिर यूं हुआ कि ख्वाब सजाए तमाम उम्र। फिर यूं हुआ कि निकले किसी की तलाश में। और फिर यूं हुआ कि खुद को भी न पाए तमाम उम्र।
1: आए हाय क्या बात।
2: और जी हाँ समीन, आइए खूबसूरत गीत हम आपको सुनाते हैं।

0: और सामिन, अभी आप मेहदी हसन की आवाज़ में खूबसूरत कलाम समात फरमा रहे थे और हमारे पास तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 20 मिनट्स रहते हैं। अगर आज के इस प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाना चाहें, कॉल करना चाहें, तो आप तशरीफ़ ला सकते हैं। स्टूडियो का नंबर आप सभी जानते हैं। आइए जैन से सुनते हैं स्टूडियो का फ़ोन नंबर और जैन बताते हैं आपको कि स्टूडियो का नंबर क्या है।
1: जी मोज़ सामीन इकराम, हमारे स्टूडियो का नंबर है 01274-30667।
0: अगर 77777
1: 01274-30667।
0: जी जी, और सामीन आप पे कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त है, अक्सर होता यूँ है कि जब हम प्रोग्राम ख़त्म करने वाले होते हैं तो हमारे बहुत से सामीन आ जाते हैं और उस वक्त हम माजर चाहते हैं कि हम आपकी कॉल नहीं ले पाते। ये वक्त है, अगर आप कॉल करेंगे तो आपसे फ़ौरन बात हो जाएगी और आपकी आवाज़ दीगर सुनने वाले भी सुनेंगे।

0: रजिया साबिन जी एस रावल की खूबसूरत शायरी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की, फिल्म का नाम था आबरू। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं जैन, और जैन ने गालबन कुछ कलाम मंतखब किया है आपको सुनाने के लिए। जी जैन,
1: बहुत खूब। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे हैं पाकिस्तान बरसगीर में, तो उनका एक शेर है, इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब वरना हम आदमी थे काम काम के। उसके जवाब में परवीन शाकर ने कुछ लिखा, वो कहती हैं, जुनूने इश्क था तो कट जाती थी रात बातों में, जुनूने इश्क था तो कट जाती थी बात रात बातों में, सजाए इश्क मिली तो हर लम्हा सदियों जैसा लगता है। फिर इलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, जुनूने इश्क से खुदा भी ना बच सका इकबाल, जुनूने इश्क से खुदा भी ना बच सका इकबाल, तारीफ हुस्न यार में सारा कुरान लिख दिया।
0: मैं ये सोशल मीडिया की जो शायरी होती है ना, ये स्टूडियो में नहीं हम सुनाते, क्योंकि कुछ ऐसे इसमें अल्फाज हैं कि आजकल आपको पता है कि इकबाल का नाम सिर्फ लिखा जाता है, शायरी इकबाल की नहीं होती, ये शेर इकबाल का नहीं है किसी तरह, और इसमें हम माजर चाहते हैं कि ये बिल्कुल शेर गलत है, और
1: ठीक हो गया।
0: हम इसके लिए माजर चाहते हैं सुनने वालों से। हमेशा शायरी जो है वो थोड़ी सी तस्दीक करके लाई जाती है। सोशल मीडिया पे मैंने देखा फराज और इकबाल के हवाले से जो कुछ किसी के मन में आता है लिख के आगे उनका नाम लगाने से सोचते हैं कि ये शायरी बन गई, शायरी ऐसे नहीं बनती।
1: ठीक,
0: शायरी बड़ी मुश्किल और ऐसी चीज़ का नाम है, तो कोशिश ये किया करें कि शायरी पढ़ने से, आप किताबें पढ़ेंगे आपको खुद पता चल जाएगा शायरी क्या है।
1: ठीक,
0: तो ये बिल्कुल जो था ना, ये समझ लें कि सरासर फजूल किसी ने लिख दिया, जिसके लिए हम सुनने वालों से माजरा चाहते हैं। अगर आप मुझे पहले सुनाते तो शायद मैं आपको रोक देता कि हमने इसे लाइव नहीं सुनाना।
1: जी,
0: बहरहाल सामीन हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, अगर आप तशरीफ़ लाना चाहें तो तशरीफ़ ला सकते हैं। मैं आपको जालिब का एक खूबसूरत कलाम सुनाता हूँ कि अफसोस तुम्हें कार के शीशे का हुआ है, जिस तरह आप जानते हैं कि जिस तरह मुल्क में ड्रामेबाजियाँ चलती हैं, और ये हो गया और वो हो गया, और 9 मई और 10 मई और 12 मई, तो ये सब कुछ जो कारस्तानियाँ हैं उसके हवाले से ये पहले भी होता रहा, ये ड्रामेबाजियाँ कुछ नई नहीं हैं, ये कौम इनसे बखूबी वाकफ है। तो उसी एतबार से आज से 50 साल पहले जालिब ने लिखा था कि अफसोस तुम्हें कार के शीशे का हुआ है, अफसोस तुम्हें कार के शीशे का हुआ है, परवाह नहीं एक माँ का जो दिल टूट गया है। अफसोस तुम्हें कार के शीशे का हुआ है, परवाह नहीं एक माँ का जो दिल टूट गया है, होता है असर तुम पे कहाँ नाला वो गम का, होता है असर तुम पे कहाँ नाला ये गम का, बरम जो हुई बज़्म तरब उसका गिला है, और फ़रौन भी नमरूद भी गुजरे हैं जहाँ में, फ़रौन भी नमरूद भी गुजरे हैं जहाँ में, रहता है यहाँ कौन, यहाँ कौन रहा है।
1: क्या बात,
0: फ़रौन भी नमरूद भी गुजरे हैं जहाँ में, रहता है यहाँ कौन, यहाँ कौन रहा है, और तुम जुल्म कहाँ तक तहे इफलाक करोगे, तुम जुल्म कहाँ तक तहे इफलाक करोगे, ये बात ना भूलो कि हमारा भी खुदा है।
1: क्या बात,
0: तुम जुल्म कहाँ तक तहे इफलाक करोगे, ये बात ना भूलो कि हमारा भी खुदा है, और आज़ादी इंसान के वही फूल खिलेंगे, आज़ादी इंसान के वही फूल खिलेंगे, जिस जा पे जहीर आज तेरा खून गिरा है।
1: क्या बात,
0: और ताचंद रहेगी ये शब गम की स्याही, ताचंद रहेगी ये शब गम की स्याही, रास्ता कहीं सूरज का कोई रोक सका है। ये लाजवाब शेर है इस गजल का कि ताचंद रहेगी ये शब गम की स्याही, रास्ता कहीं सूरज का कोई रोक सका है, और तू आज का शायर है तो कर मेरी तरह बात, तू आज का शायर है तो कर मेरी तरह बात, जैसे मेरे होंठों पे मेरी दिल की सदा है।
1: क्या बात है, क्या क्या।
0: आइए अब आपको एक खूबसूरत कलाम सुनाते हैं, और देखते हैं कि ये कलाम हम आपको सुना पाते हैं नहीं, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ साथी हमारी मदद कर रहे हैं।

0: और समीन, अब इसी के साथ ही अपने आज के इस प्रोग्राम से आप सुनने वालों से इजाजत चाहेंगे, और शायद मुहर्रम से पहले हमारा ये आखिरी प्रोग्राम है। इसके बाद एहतराम मुहर्रम में रंगे महफिल आपके लिए पेश नहीं किया जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अब आपके मेज़बान जैन भी आपसे इजाज़त चाहेंगे और तो राब भी आपसे इजाज़त चाहेंगे।
1: जी जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी मोहब्बतों का, आपकी चाहतों का, आपने बहुत ही
2: खूबसूरत माहौल और समय बनाया।
0: माइक ऑन नहीं थी, आप बोलिएगा फिर दोबारा।
2: जी जी सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया और आपकी मोहब्बतों का और आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया, और देखने और सुनने वालों का भी शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए वक्त निकाला।
0: और तो राब आप भी इजाज़त ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में आपसे भी मुलाकात होगी। और समीन आप भी इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अब तो जाते हैं बुध कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज।
3: On 14:13 AM.
4: And the winner is
5: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
7: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
6: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
7: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
8: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 14:13 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
9: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
10: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
9: अरे पगली, अब दुबई ब्रैडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
10: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
9: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
10: 30 वेटले हिल ब्रैडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
9: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
11: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
10: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
9: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।

0: Master Jewelers, 93 Hawson Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
1: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
3: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट।

0: अरे ये पूरे ब्रेडफ्रूट में क्या है शोर?
1: आपको नहीं पता ऑफर्स मिले हैं स्टोर।
2: ब्रेडफ्रूट में फर्नीचर का

0: building a strong career with Safeway Rider, you can learn automatic and manual driving with trusted. We offer theory classes online and in class to help you pass first time. Need a taxi man?
1: दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
2: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
1: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
2: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन ब्रेडफोर्ड, BD95ER 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Hotham Grant Road, Bradford 7414760.
1: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
2: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
1: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
2: मेनिंगम सुपर स्टोर,
3: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
3: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
4: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: आजान का वक्त हुआ चाहता है इस आजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सिलिस्टर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती आजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio. 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
7: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
7: बालियां अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
7: आज ही मामू काके की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
7: आपकी शान
6: हमारी आन,
7: क्वालिटी की पहचान।
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
8: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
7: सोफी ज्वेलर्स?
8: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
7: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
9: ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
6: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस ट्रक फोकलिफ्ट
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
6: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
6: 33 Wetley Lane ब्रेडफोर्ड 01274201679।
9: safewayrider.co.uk। सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
6: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली £299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली £99।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

0: Master Jewelers, 93 Horton Grange Road, Bradford 7, 01274-414-760.
1: ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
2: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
3: ओपन 7 डेज 10 टिल 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पौंड ब्रैडफोर्ड, 9627229627.
2: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
4: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
5: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
4: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
5: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
6: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop, the best Asian music online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 257। दुबई ज्वेलर्स।
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 26007 8।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए। एशियन रेडियो,
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
8: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
8: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to Bradford Asian Radio.
1: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका, पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ चोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक, आटा चावल दालें मसाला जात, रोजाना ताजा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे, फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड ब्रेडफोर्ड BD88JL। बुखारी पसंद आपकी और हमारी बुखारी। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां कंगन कांटे,
8: बालियां अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
7: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान।
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane ब्रेडफोर्ड, BD95VR 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स। अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
9: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलेन पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
8: सोफी ज्वेलर्स?
9: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
8: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलेन, BD94QU 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
8: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
8: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।

कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, कुरान की आयत खुदा खोल रहा था, उम्मत को वो आका के लिए तोल रहा था। कंकर भला देते नहीं आका की गवाही, सरकार के लहजे में खुदा बोल रहा था।

0: listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
1: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: And the winner is...
5: And the winner is...
6: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
7: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
8: आओ असल सोने के जेवरात के लिए दुबई चले।
9: मगर दुबई का टिकट तो हमने लिया ही नहीं।
8: अरे पगली, अब दुबई ब्रेडफोर्ड में ही आ गई। जी हाँ, दुबई ज्वेलर्स ने व्हाइट एबे रोड पर पेट्रोल स्टेशन के पास खूबसूरत जेवरात का शानदार शोरूम खोल दिया है।
9: झिलमिल करते कांटे, बालियां, कंगन, गले के हार 22 और 24 कैरेट गोल्ड में तैयार।
8: टॉप क्वालिटी, बेहतरीन सर्विस, ओपन 7 डेज।
9: 30 वेटले हिल ब्रेडफोर्ड, BD8 8NG, फोन 01274 477 2577। दुबई ज्वेलर्स,
8: व्हाइट एबी रोड पर धमाके पे धमाका। पेट्रोल स्टेशन के बाद अब पेशे खिदमत है बुखारी सुपर स्टोर, जिसकी सस्ती कीमतों का है हर तरफ शोर। होल सेल प्राइसेस डायरेक्ट टू द पब्लिक। आटा, चावल, दालें, मसाला जात, रोजाना ताज़ा सब्जियां और फल फ्रूट, हलाल गोश्त और चूजे। फैमिली माहौल में एक ही छत तले हर शय मिले। बचिए इधर उधर की ख्वारी से, शॉपिंग कीजिए सारी बुखारी से। बुखारी सुपर स्टोर, नेक्स्ट टू दुल्हन बुटीक, व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8JL। बुखारी, पसंद आपकी और हमारी बुखारी।
10: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR। टेलीफोन 07885 428 3499। अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 8DN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424 444. Or donate online at ikca.org.uk.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
14: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: You're listening to Bradford Asian Radio,
0: 1413 AM and online.
3: You're listening to
4: Bradford Asian Radio on 1413 AM.